0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Brand new Honda City चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: Follow us on Instagram at cityfm89
2: for your infinite scrolling wheel fix.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
3: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
4: City FM 89
1: on the dial. You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30.
3: City FM 89.
4: Brand new Honda City चाहिए है। बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: City FM 89.
5: We are playing your song.
6: Hold on! Special delivery coming through!
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
0: You're listening to City FM 89.
5: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Nonstop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Sony has announced that it will stop producing physical discs for all new PlayStation games starting in January 2028, marking a move into an all-digital future. After that, every new release will be sold digitally through the PlayStation Store and other retailers. Games released before the cutoff will continue to be available on disc.
3: You're listening to City FM 89.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
9: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: सिटी FM 89.
11: You're listening to
12: Non-Stop Hits.
13: No talk.
14: Just you
13: and the music.
14: Back to back
13: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: Brand new Honda City chahiye hai. Bas 20 din tak apne Easy Paisa account mein 1 lakh rupaye ka balance maintain karein aur lucky draw mein jeete brand new Honda City. Sirf yahi nahi, apne Easy Paisa account mein 5000 rupaye deposit karke paaye EV bike, iPhone aur iPads jeetne ka mauka. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: सिटी एफएम 89,
1: यू आर लिसनिंग टू
5: नॉन स्टॉप हिट्स।

0: City FM 89.
1: It's 6:30 p.m.
2: City FM 89.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैस कैश।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू है
6: Pediasure से आईवीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth ताकि ये grow करे 50% faster.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना
8: The first time at the disco.
9: When you love someone, it's natural, not demanding.
8: Holiday with friends. Retro cinema.
10: Hey, where did we go? Days when the rains came.
8: To music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
11: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. Only on City FM 89.
12: City FM 89. We're playing your song.
13: You're listening to
14: Non-stop hits.
15: You are listening to
16: The Hot List. Back-to-back music.
17: Stay tuned.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Text pay karna ab hua aasan. Abhi Jazzcash app download karein aur apna text pay karke lucky draw mein shamil ho jayein aur jeetein electric scooter. Aasan payments aur exciting rewards ke liye. Jazzcash hai na.
3: Kya aap jante hain? कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: That is on a nice Sunday evening. That's Bertie Higgins, great storyteller, Casablanca. I love your playlist, my friend, as always, amazing. Well, thank you so much, sir. That is truly flattering. Quick ad break, and I shall be back with some stylistics.
1: City FM 89.
2: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
4: brand new honda city chahiye hai बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
6: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89 वी आर
7: प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
8: रेट्रो 89 विद अमीन नसीर

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
7: सिटी FM 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
8: एवरीबॉडी गो।
1: You're listening to
9: Retro 89 with Amir Nasir.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना।
7: 89.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैस कैश।
5: Hold on, special delivery coming through.
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
7: We are
9: City FM 89.
1: You're listening to
10: Non-stop hits.

0: 89.9।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश।
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
3: It's so easy.
4: 0314-289-8989.
3: Save, text, voice note or call to get your song played.
4: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना।
6: City FM 89, we're playing your song.
4: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: Have you saved our WhatsApp number yet?
6: 03142-898989.
7: Get in touch over WhatsApp.
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix.
10: Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
11: Text pay karna ab hua aasan. Abhi JazzCash app download karein aur apna text pay karke lucky draw mein shamil ho jayein aur jeetein electric scooter. Aasan payments aur exciting rewards ke liye. JazzCash hai na.
3: Sound of your city. City FM 89.
12: Mornings evolve, and so do we.
13: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
14: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
12: The freshest music, the hottest gossip.
13: And the energy Gen Z lives on.
12: It's bold, it's current, it's your morning routine.
13: The Breakfast Show.
12: Only on City FM 89.
15: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
16: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
3: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to